ताहर नेपल सब घाल गवास मेरे मन हर ऊपर की जे भरवासा जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी हर अपनी पैद रखे जनता सा जे अपनी बिरथा कहो अवरा पे ता आगे अपनी बिरथा बहुत कढ़ा सा अपनी बिरथा कहो और अपने स्वामी पे जो तुम्हारे दुख तक काल कटा सा सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पे कहिए

तू आप ही मौत के कारण दसन लग पे अपनी सियाणप के नाल तेन पता नहीं सी कि परमात्मा बेअंत गुणा का मालिक है जेड़े तू मौत के कारण दस रहा परमात्मा के पास होर भी कोई कारण हो सकता जेड़ा तेन चेते ना हो सतनाम श्री वाह होर भी कोई कारण हो सकता जे चंगा हुंदा हर नाकश कहंदा हे प्रभु मैनू जीवन की जुगत दे दे हे प्रभु तू मैनू जीवन की जुगत दे दे ओ जीवन तो मिलिया नहीं ते फिर मौत का कादा डर सी तैनू जब सतनाम श्री वाहिगुरु जीवन लैंदा जे तू कह देंदा मैनू जीवन दे तां फिर परमात्मा प्रदान हुंदा तेरी मैं प्रदान ना हुंदी जदों नाम तो कोई दूर चला जाए रावण वर्गा विद्वान भी मूर्ख बन गया जो सतनाम श्री वाहिगुरु क्योंकि नाम तो दूर चला गया सत संतोख विचार उदो ही है जे नाम का आधार

अगला सवाल कि ये भोजन नाम रस वाला किवें छकिया जांदा है, किवें पीता जांदा है। हुण भोजन भी मिल गया, पता भी चल गया भोजन कित्थे है, ये भी समझ आ गई भोजन बड़ा श्रेष्ठ, पर छकिया किवें जांदा है, किवें पीता जांदा है, उहदी जुगत दसदे ने।

इस भोजन नाल तुहानू कोई बीमारी नहीं आएगी, वकार खत्म हो जाएंगे। ते इस भोजन छकन वाले नू सतगुरु की कहंदे ने हुण, फिर की होएगा?

कोई रसना खाली ना रहे। पहले दास बोलेगा, दूसरी बार मेरे वीर, तीसरी बार मेरिया भैन। दो ही पंक्तियां बोल के समाप्ति।

आग मारू टिक भई आत्मा विच अणख जाग उठदी है क्योंकि उत्थे केवल सच टिकिया हुंदा है। सच है निरभउ निरवैर, इसलिए स्वयं धर्म दृढ़ हुंदा है। अजेही आत्मा विच जुर्रत भर जांदी है, बेपरवाह हो जांदी है, कायरता नस जांदी है। यह है मारू दा प्रभाव। सुन कै सुध न रहे कायर की, जब बाजै धुन मारू। फिर मारू राग विच वैराग भावना दी भी प्रधानता होण करके इस नूं प्राणी दे चलाने समय गाउण दी भी प्रथा है। सो युद्धां समय अते चलाने समय इस राग नूं गाया जांदा है। एक पासे तां इस विच जोश है, दूजे पासे वैराग। जोश दी भावना विच भगत कबीर जी फरमांदे हन, सूरा सो पहचानी है जो लड़ै दीन कै हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कभू ना छाड़ै खेत। एक वो आत्मदर्शी सूर में हन जिन्ना दे गगन नगर विच दमामे वजदे हन, अते माया तूती दी आवाज नहीं सुनदे। जीवदियां उन्हां नूं मरण दी सोझी हुंदी है। इस लई आत्मक पंथियां नूं आदेश है, पहला मरण कबूल, जीवन की छड आस। हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। सारियां हालतां विच मारू गाव्यां ताही सफल है जे शब्द अंदर है, जे पंच बहराई जित ले गए हन। गुर कै शब्द आराधी है, नाम रंग बैराग। जीते पंच बहराइया नानक, सफल मारू एह राग। मारू बड़ा प्रसिद्ध अते पुरातन राग है। इस नूं कई नामां नाल पुकारिया जांदा है अते भिन्न भिन्न ढंगां नाल गाया जांदा है। सात संगत दे चरणां विच बेनती है कि जिवें श्री दरबार साहिब विच अमृत वेले तो रात तक कीर्तन दियां अठ चौंके दी परंपरा है, जिन्हां विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब विचों 31 रागां विच उचारी अमृत बाणी दा कीर्तन निर्धारित रागां विच हुंदा है। उस तों सीध लै के गुरु बख्श कीर्तन दी मर्यादा नूं मुड़ प्रचलित करन लई ही अदुत्ती गुरमत संगीत सम्मेलन एक निमाणा यतन है। शुद्ध रागां दे सरूपां नूं सर्व प्रमाणित अते प्रमाणिक रूप देण लई राग निर्णायक कमेटी बनाई गई। विद्वानां ने शुद्ध रागां दी इकसारता अते सर्व प्रमाणित प्रचलन लई शुद्ध सरूपां नूं अंतम रूप दिता। यह पहला उद्यम है, इसलिए इस विच रहियां कमियां विचार द्वारा दूर कीतियां जा सकदियां हन। राग मारू दा जो पुरातन स्वरूप गाया जांदा सी लगभग अलोप हो चुका है। उसे स्वरूप नूं मुड़ प्रचलित करन लई जो पुरातन स्वरूप निश्चित कीता गया है, उस विच दोनों धैवत, दोनों निषाद अते दोनों मध्यम दा प्रयोग हुंदा है। आरोह विच रिश्व नहीं लगदा। इस दा वादी स्वर गंधार अते समाधि निषाद है। गायन समा तीजा पहर। असीं दलीप चंद्र बेदी जी दे अति धन्नवादी हां कि जिन्हां ने सानूं मारू दा इह सरूप दस्या। इह ओह सरूप है जो पुरातन रागी रबाबी सिंह गाउंदे चले आए हन। हुण सरवण करो प्रोफेसर करतार सिंह जी पासों शब्द। मोको कोई न जानत कहियत दास तुम्हारा।